0: Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shahin Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shahin Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

क्वाली स्पेशल में एक बार फिर आपको फैसल याकूब सुल्तानी का सलाम कबूल हो, और आज भी आपका और मेरा साथ रहेगा, और आज भी मुख्तलिफ कलाम आपको सुनाएंगे। सुबह का वक्त है और सुबह आप लोग कोई कहीं जा रहा होता है, कोई काम के लिए निकल रहा होता है, कोई काम छोड़ के जा रहा होता है, तो तमाम को जनाब एक बार फिर सलाम। चलते हैं आज के पहले कलाम की तरफ।

तमाम ही कलाम बड़े खूबसूरत होते हैं और आज की ये महफिल, और ये महफिल हर रोज होती है हमारी, और हमारा और आपका साथ दो घंटे होता है। दो घंटे में आपके लिए मुख्तलिफ कलाम आपके लिए पेश करते हैं, और अभी भी पहला कलाम अभी आपने सुना और आपको एक और कलाम खूबसूरत सुनाते हैं।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

वेलकम बैक, खुश आमदेद। जिनने अभी ज्वाइन किया ये क्वाली स्पेशल और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी। और क्योंकि वक्त था ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, स्टे ट्यून्ड। और ब्रेक के फौरन बाद अब चलते हैं हम अगले कलाम की तरफ।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Fir Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, naseersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम .uk पर तलाश करें
4: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment, every single transaction. Get ready for a revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
5: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: ये तो क्यों परेशान खलते हुए हो जी
7: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने कोई कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत लाजवाब सर्विस
7: ए एमओटी वाले हैं किधर
6: ए

0: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो, फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो। अगर तुम टैक्सी चलाने हो, तुम प्राइवेट हर चलाने हो, या फिर कोई किराए की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है, तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। जेडे शफील्ड, दादरम, गिरदोनवाले इलाकों में टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम मुहैया करने। द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने। उन्होंने फोन नंबर है 03-00-571-009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड, रादरम।
1: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre, Link FM. Link FM.
2: And the winner is.
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable, and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Tu sab ka hai khuda, tu sun meri dua, ye toota dil mera tadpata hi raha hai sada. Tu sab ka hai khuda, tu sun meri dua, ye toota dil mera tadpata hi raha hai sada.
6: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abdul Rahman.
9: My name is Sai Mudassir.
10: This is Rahul.
11: My name is Rizwan Ishraq.
12: My name is Ashan.
13: My name is Azan Mudassir.
14: This is Ariba and you are listening to Link FM.
1: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.
16: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम, हर लम्हा हर जगह

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

0: keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप

0: The voice of the communities. 96.7 Link FM. Link FM.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफर साथ साथ करता रहूंगा।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: ये तुसा किया परेशान खलते हुए हो जी
2: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने ओए कार वे या वैन ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
2: ए एमओटी वाले हैं किधर ए

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: ये धमाल हम करेंगे यारा, बैंड बाजे से साजनिया।
1: देखो मुझे धीर तो धर के।
0: अरे पकड़ मेरा हाथ।

0: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
1: Link FM.
2: मिनहाज उलकुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूबो अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
0: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114-261-8182 or email info@linkfm.org.

0: तुम्हें खोकर मैंने अपने आप को पा लिया।
1: Linking communities, thinking positive. This is Link FM.
2: Cook Studio, Season 14.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

0: From the heart of the city, this is Link FM.
1: मिनहाज कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
2: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114 261 8

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक FM शेफील्ड।

0: Link FM, your number one community radio station.
1: मिनहाज उलकुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
2: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7 FM।

0: अब बता कहाँ से शुरू करना है?
1: हर उस जगह जहाँ वो पिछले साल मिली थी।
0: यार एक तो तू पागल है, ऊपर से मैं पागल जो दोबारा यहाँ आ गए। तू पक्का है? तुझे सच्ची लगता है वो आई होगी यहाँ?
1: इस तारीख का कुछ तो मतलब होगा।

0: Sheffield's very own community radio station, Link FM.
1: मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बाद नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
0: लिंकिंग कम्युनिटीज थिंकिंग पॉजिटिव। दिस इज योर लोकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शेफील्ड्स लिंक एफएम।

0: 96.7 Link FM.
1: मिनहाज कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
0: Listen live online at linkfm.org.
2: Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM. मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM. दिल से आपके साथ लिंक FM.

0: Linking communities, thinking positive. This is Link FM.
1: मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बाद नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
2: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info

0: today, then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233, or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
1: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग आले। खान कैटरिंग राधरम जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब है नहीं, एक बारी अजमाई के तको। शादी ब्याह, सालगिरह, मानिया, मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ते एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो। एक और भी गल बुझो, खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने। आर्डर निका होया या बड़ा, ऑलवेज वेलकम। खाने ने आर्डर वास्ते भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर राबता करो 07931737547
2: या 07784850934।
3: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday.

Assalamu alaikum and a very warm welcome. आप सुन रहे हैं ड्राइव टाइम शो. ऑन लिंक FM 96.7 FM. लिंक FM, लिंकिंग कम्युनिटीज थिंकिंग पॉजिटिव. मैं हूं जवाहर चंजुआ. आपका साथ देता रहूंगा शाम के 6 बजे तक, इस उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ होंगे. आपका सफर जहां का भी होगा, कहीं भी जा रहे होंगे, लिंक FM आपके साथ साथ होगा. आपने सिर्फ ट्यून इन करना है. अगर अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं तो 96.7 FM की फ्रीक्वेंसी या DAB पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. और घरों में भी आप अपना ये प्रोग्राम सुन सकते हैं अगर आपके पास रेडियो है या DAB है. किचन में सुने, बेडरूम में सुने या फ्रंट रूम में, जहां भी सुने, उम्मीद है आज की शाम भी आप एंजॉय करेंगे हमारे साथ. कुछ नए कुछ पुराने, कुछ मोहब्बत भरे कुछ दुख भरे, सब ट्रैक्स होंगे आपके लिए. लेकिन उम्मीद ये है कि आपको वो सारे ट्रैक्स अच्छे भी लगेंगे. हमारे स्टूडियो का नंबर है 01142618181 एंड व्हाट्सएप 07939849339. कीप सेंडिंग योर व्हाट्सएप मैसेजेस. फॉर फीडबैक्स ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्राम के दौरान ही मैसेजेस करें, आप वैसे भी मैसेजेस कर सकते हैं, हमें आपका मैसेज मिल ही जाएगा. तो प्रोग्राम के बारे में या बाकी प्रोग्राम्स के बारे में भी अगर राय का इजहार करना चाहें, 07939849339. आई विल अप्रिशिएट योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. एंड व्हेन आई से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्राइव टाइम हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अदर शोज ऑल्सो. सो साथ देते रहिएगा और एंजॉय करें आज का ड्राइव टाइम.

उम्मीद करते हैं कि अब तक का जितना भी प्रोग्राम है आपको पसंद आ रहा होगा और अभी तक आप हमारे साथ हैं ना। ओ भाई साथ ही रहिएगा, आजकल पता ना आपको मिटी पाओ। और कुछ ही देर के बाद हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे और कमर्शियल ब्रेक के उस पार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो साथ देते रहिएगा, जाना कहीं नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए जाना है तो बेशक चले जाए, लेकिन फिर आ जाइएगा।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 014-308-2727 or visit us online, naseersolicitors.co.uk. Naseer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं 03300571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम .uk पर तलाश करें
4: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment, every single transaction. Get ready for a revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: परेशान खड़ते हुए जी
7: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म की गड्डियां नहीं एमओटी करने भावे कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत लाजवाब सर्विस
7: ए एमओटी वाले हैं किधर
6: ए ए

उम्मीद करते हैं कि ये ट्रैक भी आपने एंजॉय किया होगा। और हमें कुछ मैसेजेस भी आए थे और थोड़ा सा हमारा इशू चल रहा था व्हाट्सएप का, लेकिन अब आपके सारे मैसेजेस हमें मौसूल हो चुके हैं एंड आई विल बी रीडिंग योर मैसेजेस शॉर्टली। एंड आई एक्सपेक्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम यस्टरडेज कंपटीशन टू व्हाट्सएप मी। ये तो कोई बात ना हुई ना कि व्हेन देयर इज अ कंपटीशन गोइंग ऑन देन यू व्हाट्सएप, अदरवाइज यू डोंट। व्हाट्सएप नंबर इज 0793984939 एंड स्टूडियो नंबर इज 0114261811।

लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लिंक एफएम को साथ जुड़े रहेंगे वीकेंड्स की जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें भी। And I hope you do enjoy our company 24/7, 7 days a week.

शाह का मैसेज सबसे पहले आया था, आप कह रहे हैं सलाम वेरी नाइस प्रोग्राम कीप इट गोइंग, थैंक्स फॉर द फीडबैक। कलीम ने हमें सलाम फेस टू फेस भी भेजा और साथ में व्हाट्सएप भी किया। शबराज खान ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, कह रहे हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम। शबराज खान साहब, अगर ऐसी बात होती तो फिर ट्रैक्स भी सेम लगते ना। अगर सेम लग रहे हैं तो फिर और बात है, लेकिन वैसे तो कोशिश होती है कि चेंज हो। क्यों भाई, क्यों लगा दें भाई, यहां पर बाकी क्या लगा हुआ है। अरशद भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, कह रहे हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम। आते साथ ही फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर देते हैं भाई, ये वाला लगा दो, ये वाला लगा दो। यार लगा दिया मतलब जो हम लगा रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहा, और जो बंदा मुझसे गाने लगाने की फरमाइश कर रहा है वही कल मुझसे पूछा था कि ये वाला जो ट्रैक लगाया है इसके ये ट्रैक कहां से मिलता है। भाई आपको बड़े ट्रैक का पता है, आप पता कर लें फिर। ये चले मजाक कर रहा हूं भाई, नाराज ना हो ना, दिल पे मत ले यार।

A very old and classic track. लेकिन साथ ही साथ ब्रेक आ रही है हमारी. What a beautiful track. ये ट्रैक मुझे 2001 में ले गया. वैसे ट्रैक तो उसे भी पुराना है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत चला करता था. कितनी हसरत है हमें.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114 365 4454 or 07419 299 729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week, our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की माया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम

Welcome back after the commercial break. If you just tune in, this is Link FM 96.7 FM. And this is Drive Time Show. Thursday's Drive Time Show. Thursday, 4th of June 2026. और पता भी नहीं चला कि इस साल में जून आ गया. जून का मतलब है कि आधा साल हमारे हाथों से निकल चुका है और ज़िंदगी का एक और साल आहिस्ता आहिस्ता हम सब की ज़िंदगियों से निकल रहा है. प्रोग्राम में अगर आप साथ देना चाहें 01422618181 एंड व्हाट्सएप 07939849339. ठंड प्रोग्राम है क्योंकि आज कोई कंपटीशन नहीं है. सब ने सलाम दुआ की और पतली गली से निकल लिए. और कहा जा कह रहे जे जे कदी ते हस बोल. क्यों मैंने यार कोई रोने वाली महफिल लगाई हुई है? रोज आपके लिए हंस रहा हूँ और आप लोगों को हंसा रहा हूँ, यानी कोशिश कर रहा हूँ. ख्वाह मेरा दिल रो रहा हो तब भी दिल को मैं साइड पे करके आगे आप लोगों को प्रोग्राम करके आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ मैं. क्या फिर भी कोई अप्रिशिएशन नहीं है? अप्रिशिएट करें आप यार. रोज आना आ जाता हूँ आपकी आपका दिमाग खाने के लिए. अच्छा दिन गुजरा हो या बुरा, मैं खुश हूँ या ना खुश, आपको एक ही तरह की आवाज सुनने को मिलती है. ये बात तो आप माने. ये भी एक हुनर है ना भाई. अगले ट्रैक की तरफ चलते हैं और उम्मीद करते हैं ये ट्रैक भी आपको अच्छा लगेगा. एंड कीप सेंडिंग योर व्हाट्सएप मैसेजेस ऑन 07939849339.

आमुनी पे मरते हैं. दिस इज लिंक एफएम 96.7 FM. मोहसिन भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज. और आपको पता है हम खुले डुले बंदे हैं, जैसा मैसेज आता है वैसे ही पढ़ देते हैं. मोहसिन भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अच्छा है आज थर्सडे है, नेक्स्ट 3 days आराम होगा, सुकून होगा. नाइस सॉन्ग. और डेनिंगटन से इस वक्त आप सुन रहे हैं. क्या मोहब्बत है भाई, क्या मोहब्बत है भाई. मैं भी बड़ा खुश हूं कि मेरी भी आवाज अगले 3 दिन नहीं जाएगी बात. मुझे पता है यार, मुझे पता है कईयों को मेरी आवाज सुन के खुशी महसूस नहीं होती. आई अंडरस्टैंड यार, आई अंडरस्टैंड.

और कलीम कितनी दफा सलाम करोगे मेरे भाई, और कुछ कहने को सुनने को नहीं है, कलीम भाई बार बार मुझे सलाम करें। 1629 पर आपने मुझे सलाम किया था यार, फिर आपने मुझे 1706 पे सलाम कर दिया। सलाम पे सलाम करे जा रहे हो भाई, अल्लाह खैर करे। मुझे पता है मोहसिन भाई, आप मुझे ऐसे ही तंग करते रहते हैं। बहुत अच्छी दुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं सलामत और खुश रहें मेरे भाई। आपकी दुआएं चाहिए और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का बड़ा करम है। बस जिंदगी में दुआएं मिलती रहे, किसी की बददुआ ना मिले, किसी की आह ना मिले, इस चीज की दुआ किया करें। यकीन करें, यकीन करें। और वो कहते हैं ना कि मैं कुछ दिन पहले भी सुन रहा था कि जरूरी नहीं होता कि कोई आपको बददुआ ही दे। अगर आपने कभी किसी का दिल दुखाया हो किसी भी वजह से, कारोबार की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, जायदाद की वजह से, किसी भी वजह से, और अगर उसके दिल में आपके लिए कोई ऐसी फीलिंग हो, आ अगर उसकी निकल जाए, उसके दिल में इतनी तकलीफ हो, तो यकीन करें मैं और आप फिर फेल हो गए। फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं है, फिर ये बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, करियर, जॉब्स, बिजनेस, नथिंग। लेकिन अगर मेरे पास और आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि दुनिया में कोई ऐसा दिल नहीं है जिससे हमारे लिए आह निकलती है। तो कोशिश मुझे भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, गलती का पुतला हूं, कि हमारे अमल से, हमारी बात से कभी ऐसा ना हो कि किसी का दिल इतना दुख जाए। यू नो, बददुआ दे दे ना, अगर कोई बददुआ दे दे तो इस पे खुश हो लिया करें। डरे उस वक्त जब उसने आपको बददुआ नहीं दी और वो खामोश हो गया, क्योंकि आपको पता है दिल में रहता है रब। और अगर एक बंदा खामोश हो गया अपनी तकलीफ के ऊपर, तो उसको सब्र का भी सिला मिलेगा, और फिर हमारे लिए, आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी।

जी उम्मीद करते हैं कि ट्रैक अच्छा लगा होगा मोहसिन साहब को, और कह रहे हैं कि अच्छा लगा है, जुनेद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बस वही हरकतें हैं भाई की, अगर मैंने वो वाला लगा देना था तो उसने वो वाला सुनना था, अगर मैंने वो वाला लगा देना था तो उसने वो वाला लगाना था, अगर वो वाला सुन रहा होता तो उसको वो वाला लगा के देना था। No, you can't say that I stopped doing request. I stopped playing your request. I told you 100 times, yeah. Go and listen to that radio. ये मेरा भाई है ना, बहुत अच्छा भाई है। ये वो वाला भाई है कि जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं ना जिनके बगैर भी आपका गुजारा नहीं है, जिनके साथ भी आपका गुजारा नहीं है। ये मेरे भाई वो हैं। अल्लाह खुश रखे, हंसी मजाक हमारा चलता रहता है, अल्लाह ये मोहब्बतें इसी तरह कायम और दायम रखे। अगला ट्रैक जो है ना जुनेद, वो आपके लिए। जुनेद को वैसे भी सैड ट्रैक्स बड़े पसंद है। ओरिजिनल ट्रैक सुनना चाह रहे हो ना मेरे भाई, ये ओरिजिनल वाला है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। सैड है लेकिन इट्स अ क्लासिक ट्रैक फ्रॉम अ पाकिस्तानी सिंगर सज्जाद अली। वैसे तो बहुत से सिंगर हैं पाकिस्तान के, लेकिन सज्जाद अली का जो एक लेवल है वो टोटली डिफरेंट लेवल है। और मुझे याद है कि हम बचपन से तकरीबन सज्जाद अली के सॉन्ग्स का मैं बहुत बड़ा फैन था, और उस ज़माने में जब नया नया पॉप म्यूज़िक आ रहा था उस वक्त सज्जाद अली साहब की स्लो लेकिन लेटेस्ट म्यूज़िक के साथ जो कॉम्बिनेशन बना के वो ट्रैक्स बनाते थे वो बेहतरीन ट्रैक्स होते थे।

अच्छा आपका ये वाला दुख भी बहुत बड़ा दुख है मेरे भाई। चल मेरे भाई, जब मैं छोटा था जी, मैं वैसे अभी भी छोटा हूं, मैं छोटा सा एक बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े, लेकिन मौका नहीं दिया लोगों ने काम बड़े करने का।

याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई अगर अगले बंदे ने आपकी तस्वीर ही ना रखी हो, ये भी तो हो सकता है ना भाई। ये तो उस जमाने का ट्रैक है जब तस्वीरों का जमाना नहीं था, लेकिन अगर तस्वीर ही अगले बंदे ने आजकल के जमाने में डिलीट कर

और ट्रैक के बारे में आमतौर पर लोग कहते हैं बहुत अच्छा ट्रैक है या बहुत बकवास ट्रैक है, अच्छा ट्रैक बिल्कुल नहीं है। ये आज नया तरीका निकाला है भाई मोहसिन भाई ने, कहा है बड़ा अफसानवी ट्रैक है यार, जरा इस पे गौर करवाओ, इसका क्या मतलब है भाई।

0: और जी कहा जा रहा है कि पिक्चर दिखा सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी। यार कहीं भी नहीं लगाई हमने, हम तो रेडियो पे आके अपनी तस्वीर नहीं लगाते, आपने देखा नहीं है? कभी कभार हमारा फोटो आता है, वरना खुशी होती है। पोएट्री करते हुए टिकटॉक पे पोएट्री करते हुए फोटो नहीं आता हमारा यार। उम्मीद करते हैं ये ट्रैक अच्छा लगा होगा। इन 14 सेकंड्स वी आर गोइंग फॉर अ कमर्शियल ब्रेक, तो आपने जाना गेम, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have

वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया, मैं हूं जोहा जंजुआ एंड दिस इज ड्राइव टाइम शो। वी आर लाइव ऑन 96.7 एफएम फ्रीक्वेंसी इन शेफील्ड, रोद्रम एंड बांसले। वी आर लाइव ऑन डीएबी एंड लाइव ऑन ऐप। अगर आप ऐप पे सुन रहे हैं तो दुनिया के किसी भी हिस्से में आप हमें सुन सकते हैं अगर सुनना चाहें। उम्मीद करते हैं कि अब तक का सफर आपका हमारे साथ अच्छा गुजरा होगा।

लेकिन ये सफर अब थोड़ा ही रह गया है, सफर कंप्लीट होने वाला है थोड़ी देर में, आप सबकी छुट्टी होने वाली है, मुझसे जान छुटने वाली है, फिर आप करना चिल पिल अगले हफ्ते तक के। नो टेंशन यार,

वाह, आपको क्यों पता लगे भाई? एक हमें मैसेज आया जी, पता ही नहीं लगा और 5:30 हो गया। आपने किया क्या जो आपको पता लगे? मेरे से पूछो ना। बच्चे की जान लोगे क्या?

दो घंटे बोलना कोई आसान काम है भाई, वो भी बगैर सोचे समझे। आपको पता है अपने पास इतना टाइम नहीं है सोचने का। सोच सोच के अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी मैंने वैसे ही खत्म कर दी। इसीलिए अब जिंदगी में यही फैसला किया कि किसी काम को सोचना नहीं है भाई। बस वो किसी अकलमंद आदमी ने किसी जमाने में कहा था, फ्लो के साथ चलो भाई, फ्लो के साथ। तो अब उसकी बात समझ में आने में कई साल लगे, अब फ्लो के साथ चलते हैं, सोच के नहीं चलते यार। सोच के चलो ना जिंदगी में, सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं है। Had to take a work call. अच्छा जी, miss the song. बस यही करते हो, हमेशा यही करते हो, बस खाली हमसे डिमांडिंग करते रहते हो भाई। क्या करना है, क्या करना है भाई, क्या करना है भाई, किसका क्या करना है, पता नहीं क्या बातें हो रही हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रही है भाई। ऊपर से जा रही है, पहले बता रही है, सोच समझ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वन मोर टाइम, नहीं यार इतना सैड ट्रैक दो दफा लगाओ ना तो लोगों का हाजमा खराब हो जाएगा भाई। क्यों आप लोगों को तकलीफ देने पे तुले हुए हैं, जबकि मेरी मर्जी होती है कि मैं किसी को तकलीफ ना दूं, लेकिन हो जाता है यार, हो जाता है समटाइम्स।

चलें जी, क्या याद रखेंगे आज थर्सडे के ड्राइव टाइम शो में? पूरी नहीं लगाऊंगा क्योंकि 7-8 मिनट्स की एक गजल है जुनेद, आपको यकीनन पसंद आएगी।

जी जी हाँ, मुझे पता था आपने यही कहना है भाई कि आप कर लो। दो घंटे से मैं बातें कर रहा हूँ, उस दो घंटे से पहले मैं अपने घर से यहाँ तक वॉक करके आया, कितने तकरीबन 35 हाफ एन आवर की वॉक होगी। प्रोग्राम के बाद वॉक करके घर जाऊंगा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, लेकिन फरमाइशें देखो इन सब की। या तो ये कह रहे हो ना कि आप कंटिन्यू रखें और जैसे ही खत्म करेंगे उसके बाद आपको हम मील पे ले जाएंगे, तो मैं सोच भी लूं। लाहौर का रास्ता दिखा रहे हैं, लाहौर का टिकट नहीं दे रहे। कुछ मुझे हो जाएगा। इसी बात का डर है मुझे।

करते हैं तो आवाज में प्रॉब्लम आ जाता है, ऐप नहीं चलती। प्रॉब्लम है यार, जब भी मैं अच्छी अच्छी बातें करता था कई लोगों को मेरी अच्छी बातों से प्रॉब्लम हो जाता था, फिर मैंने अच्छी बातें करना छोड़ दिया।

जी अब आपको ऐप पे आवाज आ रही होगी। क्या करूं यार, मेरे जाने का वक्त आता है तो लोग तो मुझे मिस करें या ना करें, लेकिन ऐप जो है वो मुझे मिस करने लग जा रही है। चलो कोई तो अपना है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम, आज का सिलसिला भी आपने एंजॉय किया होगा।

जी उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी आपने पसंद किया होगा। महमूद साहब जाते जाते हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम एंड नाइस शो। महमूद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बड़ी लेट आपकी एंट्री हो रही है, 45 के बाद तो मैं वैसे भी चला जाता हूं, लेकिन शायद आज आपके मैसेज का इंतजार था इस वजह से रुक गया। अल्लाह आपको खुश रखे। प्रोग्राम के दौरान अगर मेरी किसी बात, मेरे किसी अमल से आपका दिल दुखा, मुझे माफ कर दीजिएगा। वैसे भी जुमेरात की शाम है और जुमे का आस्ता आस्ता आगाज होने जा रहा है। दिल को बड़ा करें, अगर माफ़ करना सीखें, और अल्लाह तबरक व तआला मुझे भी ये तौफीक अता फरमाएं कि मैं भी सबको माफ़ करना सीखूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माफ़ कर देता हूं। तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई मेरी बात बुरी लगी। जिंदगी रही और ये सांसें चलती रहीं तो बशर्ते जिंदगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे वाले दिन। एंजॉय द वीकेंड व्हाट एवर यू आर डूइंग एंड रिमेंबर मी इन योर दुआज़।

0: 3.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
9: Link FM.
10: जहाँ दिल मिलते हैं जहाँ बातें बनते हैं हर राह की मंजिल
8: जहाँ बातें बनते हैं वही है लिंक FM दिल से आपके साथ
11: लिंक FM शेफील्ड।

0: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
3: दिल जले, दिल जले।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफर साथ साथ करता रहूंगा।

0: your number one community radio station.
1: मिनहाज कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादस नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
2: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.

0: तुम्हें जो भी कहना है कह दो, इतना क्यों डरते हो? तुम हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो? मैं अब तो चला गया हूँ, अब तो जवाब दो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो?
1: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.

0: 96.7 FM, online, on smartphone and tablet. This is Link FM.
1: मिनहाज कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
2: द वॉइस ऑफ द कम्युनिटीज 96.7 लिंक FM।

0: are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment, every single transaction. Get ready for a revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
5: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT. अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिल एतमाद सेंटर रीटेस्ट बिल्कुल

0: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
1: This is Link FM.
2: मिनहाज कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बाद नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
3: Our voice, our choice, our radio station, Sheffield's Link FM.
4: Link FM.
5: Coke Studio Season 10.

0: The latest updates from your local community. Sheffield's very own community radio station. Sheffield's Link FM.
1: मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बाद नमाज ज़ुहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूबो अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
0: News, health, sports, educational programs and much more only on Link FM.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज्यादा अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: Listen live online at linkfm.org. Link FM.
1: मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
0: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, nazeersolicitors.co.uk. Nazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम डॉट यूके पर तलाश करें
4: Sending money home? Make it a breeze with Remit Choice. Say goodbye to fees and hello to the best rates. Speedy transfers, no matter the destination. Trust in Remit Choice for seamless security. Your money, our commitment, every single transaction. Get ready for a revolution in remittances. Download the app now and let's make money sending a joy.
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: परेशान खड़ते हुए जी
7: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत लाजवाब सर्विस
7: ए एमओटी वाले हैं किधर
6: ए ए

0: 0845 85.
1: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxiing Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Atticliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
2: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.
6: Assalamu alaikum, main hu Farooq Rashid.
7: Main Aurangzeb Chaudhary.
8: Main Aslam Bhutta.
9: Main ji Hussain Kapoor Sheffield se.
10: Mera naam Shafaq Hussain Kiani hai.
11: Mera naam Amdas Khara.
12: Main Arshad Khan Sheffield se hoon.
13: Mera naam Anjum Afsad hai.
14: Mera naam Imran hai. Keep listening to Link FM 96.7.
15: मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बादज नमाज जोहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
4: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
16: Link FM 96.7.

0: across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.
1: मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से आपको अजीम शान और रूह परवर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत है। 7 जून बरोज इतवार दिन 2 बजे बाद नमाज ज़ुहर मदीना मस्जिद शेफील्ड में। इस अजीम शान इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शिरकत कीजिए और सीरत रसूल की रोशनी से कुलूब व अजहान को मुनव्वर कीजिए। शुक्रिया।
2: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqah today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114 365 4454 or 07419 299 729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilaye.
2: Open 7 days a week, our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: ये होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया तो द क्लेम टीम तुम की खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम.
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
9: 07939-849-339. Tu sab ka hai khuda, tu sun meri dua, ye toota dil mera tadpata hi raha hai sada.
10: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
11: My name is Shireen.
12: My name is Abdul Rahman.
13: My name is Sai Mudassir.
14: This is Rohan.
15: My name is Rizwan Ishraq.
16: My name is Asham.
17: My name is Azan Mudassir.
18: This is Ariba and you are listening to Link FM.
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
19: Jahan dil milte hain, jahan baatein bante hain, har raah ki manzil.
4: Jahan baatein bante hain, wahi hai Link FM. Dil se aapke saath.
20: Link FM Sheffield.
21: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल कार्ड अंगूठी।
4: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM,
10: Sheffield.
22: जिंदगी के रोजमर्रा के काम आसान नहीं होते, लेकिन गलत अंदाज में करने पर नुकसान हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट बेनिफिट क्लेम करते हैं तो अपनी जिंदगी में किसी भी तब्दीली के बारे में DWP को बताना जरूरी है, जैसा कि पार्टनर्स के साथ रहना शुरू करना, विरासत में रकम का मिलना या काम का दौरानिया बढ़ाना। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी पार्टनर के साथ रहते हैं, चाहे वो कुछ वक्त के लिए ही मौजूद ना हो, तो इस बात की रिपोर्ट देना जरूरी है। अगर आप काम के खर्चे क्लेम करते हैं तो सिर्फ वही खर्चे क्लेम करें जो आपके काम से मुतल्लिक हों, और अगर आपके पास सेविंग्स मौजूद हैं तो उनका बताना भी जरूरी है। अगर आप किसी और को अपनी सिचुएशन में तब्दीली के बारे में बता रहे हैं तो DWP को बताना भी जरूरी है। क्या रिपोर्ट करना जरूरी है, ये जानने के लिए टेल DWP सर्च करें।
23: This

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक FM 96.7। बहुत मजा है सीने।